तारा हर दया वो संतो जी सब दूब सार नहारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू गड़ गड़ अंतर सर्व निरंतर जी हरे को पुरख समाणा। एक दाते एक पैखारी जी सब तेरे चोज वडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आव खाणा। जो सेवै तो जी जा नानक तिन करबाणा। हर ते आवे तो जी से जन जुग में सोवासी। से मोत पहे जिन हर त्याया जी तिन तोटे जम की फासी। जिन निर्भाओ जिन हर निर्भाओ त्याया जी तिन का पाओ सब गवासी। जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी ते हर रूस मासी। से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत तेरे पासलां तो जी अनक अनेक अनंता। तेरे अनेक तिंकरे हर पूजा जी तब तापे जवे बेअंता। तेरे अनेक पड़े बहु सिमर सा जी कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरु परंपर करता जी तो जे वडावर ना कोई। तू जो जो एको सदा तू एको जी तू ने चल करता सोई। तुदे आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सोई। तुदे आपे से सब पाई जी तुदे आपे से सब गोई। जनान गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानो आसा। महला चौथा तू करता सचार मैडा साई। जो तू पावे सोई थीसी जो तू दे सोई ओ पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करे ते नाम रतन पाया। गुरमहला दा मन मोगवाया तोदे आप विछोड़े आया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझी माहे तु बिन दूजा कोई नाए। जी जंद सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने। हर गुण साधी आव खाने जिन हर सिव्या तिन सुख पाया। सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए। तुद बिन दूजा वर न कोय तू कर कर वेखे जाने सोए। जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला। तेत सरल भैले नवासा पानी पावत ने किया। पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तें डूबी अले। मन एक न चेस मूड मना हर बिसर तेरे गुण गलिया। रहाओ ना हो जती सती नहीं पड़िया। मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की शरणा। जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा। पई प्राप्त मान उगते हुरिया गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते ना काम मिल सा संद पाई के उल नाम सरंजाम। रहाओ सरंजाम लाप जल तरन कै जन बिरथा जात रंग माया के।
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਵੇ ਵਾਜ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦਹਿ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਾਵ ਚਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ, ਹਮਰੇ ਦੋ ਸਵੇ ਤੋਂ ਖਾਵੋ, ਆਪ ਆਦੇ ਮੋਏ ਬਚਾਵੋ, ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸੇ ਸਭੇ ਕਰਤਾਰਾ, ਮੋਰੇ ਛਾਨਿਜ ਕਰਦੇ ਕਰੀਏ, ਸਭੈ ਰੰਗੋ ਆਸ ਸੰਗਰੀਏ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੇ ਪਿਆਸਾ, ਤੁਮੇ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ, ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੂ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖਾਂ ਮਾਰੇ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਚੌਂ ਚੌਂ ਸਤਰਾਂ ਮਾਰੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਆਪ ਹਾਦੇ ਮੁਝੇ ਅਬਰੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਾਸਨ ਵਰੀ ਹੈ, ਹੋ ਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ, ਸਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰੀ ਹੋਰ ਅੱਛਾ, ਰਾਹ ਲਿਓ ਮੋਏ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ, ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰ ਦਸ ਕੰਤਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਵਤਾਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਾਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰਮੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਗਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ, ਬੇਦਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੋਤੀਓ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਵੇਂ ਹਮਾਰਾ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣਾਇਓ, ਦੇਵ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਅਪਜਾਇਓ, ਆਦਿ ਅੰਤੇ ਕੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ, ਸਗਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨੇ ਆਪ ਸਵਾਰੀ, ਸੇਵਕਨ ਕੋ ਸੇਵ ਗੁਣ ਸੋ ਦੀਓ, ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਰਮ ਬਦ ਕੀਓ, ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਂਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ, ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰੇ ਅਸਤੂਲਾ, ਸਾਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ, ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੋ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ, ਕੇ ਕੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣੈ, ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਬੁਧ ਕਰਾਂ ਕਰਤਾਰਾ, ਪਰ ਜਾ ਤਰਤਾ ਦੇ ਅਪਾਰਾ, ਜਾ ਬਾ ਕਰ ਕਰ ਤੋ ਕਬ ਹੂੰ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇ ਤਰ ਸਭ ਹੂੰ, ਜੇਤੇ ਬਨਸੇ ਸਭ ਧਾਰੇ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੇ, ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ, ਜਾਨ ਬੇ ਭੇ ਦੇ ਆਲਮ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਨਿਰਲੰਬ, ਆਦ ਨੀਲ ਅਨਾਦ ਸੰਭ, ਤਾਂ ਕਾ ਮੂੜ ਚਾਤ ਪੇਦਾ, ਜਾ ਕੋ ਭੇਉ ਨ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ, ਤਾਂ ਕੋ ਕਰਪਾ ਹਨੁਨ ਮਾਨਤ, ਮਹਾਂ ਮੂੜ ਕੇ ਭੇ ਨ ਜਾਂਤ, ਮਹਾਂਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚਿਨ ਨੈ ਭੇਵ, ਆਵੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਣਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ, ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕੇ ਬੈਸਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ, ਇਕ ਹੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਰੰਗ ਭਿਓ ਰਾਵ ਕਈ ਭੂਪਾ, ਅੰਡ ਜੇਰ ਸੇਤ ਯਕੀਨੀ, ਉਤਪਜ ਖਾਨ ਬਹੋਰ ਰਚ ਦੀਨੀ, ਕਹੂੰ ਪੂਰਾ ਜਾਹੋਂ ਬੈਠਾ, ਕਹੂੰ ਸਿਰ ਪਿਓ ਸੰਕਰ ਕੈਠਾ, ਸਰੀ ਸਿਰ ਦਿਖਾਏ ਚੰਬੋ, ਆਦਿ ਜਗਾ ਸਰੂ ਸੰਭਵ,
अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख अभारे सिख संगरो, दुर्जित उठत पाता, सकल मलेश करो रण गाता। जया तू सब सरणी परे, तिनके दुष्ट दूत है मरे, पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सबटारे, जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं, रचा होए ताए सब काला, दोष्ट रिष्टरे तद काला, कृपा दृतन जाए न हर हो, ताके तावतन कमें हर हो, रेद सिद्ध कर्म सब होई, दूसरा ऐसा सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांते तावें उबारा, जिन नर नाम त्यार हो कहा, दारद दुष्ट दो तेरा, खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ लियो अबारी, सर्वठोर मोह सुहाई, दुष्ट दोते लियो बचाई। सवैया पाएंगे जब ते तुम रे, तब ते कहो आ तरे नहीं आने, राम रहीन पुराण कुरान ने कहे माते कन माने, सिमरत शास्त्र बे सब है, बहु भेद के हम एक न जाने, श्री अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तो बखाने, दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुम्हारो द्वार, बह गए की लाज अस गोविंदास तुहार। राम कली महला तीजा, आनंद क्यों ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती, मन वजियां वादाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावणे आईयां, शब्दो तां गावो हरी केरा, मन जनी वसाया, कहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ, तू सदा रहो हर नाले, हर ना रहो तू मन मेरे, दोग सा विसारना, अंगीकार हो करे तेरा, कार सब सवारना, सबना गल्ला समरा स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही कार तेरे, करदा तेरे सब किस है, जे दे सो पावे, सदा सिफसला तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसे आ, वाजे शब्द घनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कार तेरे, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा साब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसया, जिन शां सा पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो, जे धियां बड़े आईया, कहे नानक सुनो संतो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पान शब्द कर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजे, कला जित कर तारिया, पंज दो तुद वस कीते, काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तो जिन को, सिनाम हर के लागे, कहे नानक ते सुख हुआ, तित कार अनहद वाजे, आनंद सुनो वड पागियो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया, उतरे सगल वसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी,
संत साजन पै स्वर से पूरे गुर ते जानी, सुनते पानीत कहते पवित सतगुर आपर पूरे, बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मदावणी महला पंजवां। थाल विच तिन वस्तु पईओ सासन दो विचारू, अमृत नाम ठाकुर का पेओ जिसका सब सदारो, जे को खावै जे को पहुंचै तिसका होए अदारो, एह वस्त जी न जाए नित निरा कुरतारो, तम संसार चरण लग तरी है सब नान ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवां। तेरा कीता जातो नाही मैनो जो कितोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई, तरस पया मेहरामत होई सतगुरु।

बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी के ओंकार, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री बहुत जी सहाय वार, श्री बहुत जी की पातशाही दसवीं प्रीतम भगवती सिमरकै, गुरु नानक लई ध्याए फिरंगत गुर ते अमरदास। रामदास होई सहाय, अर्जन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जज साबद हो जाए, तेग बहादुर सिमरै कर नौन दे आवे ताए। सब ताई होई सहाय दसवें पातशाह, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। ओ सब ताई होई सहाय, दसो पातशाहियों की जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दीदार दा ध्यान तर खालसे। सब बोलो जी वाहिगुरु। पंजां प्यारिया चौं साहिबजादियां, चालिया मुक्तियां, अठियां जपियां तपियां, शाही सिंघां सिंघणियां, जिन नाम जपिया वांड छकिया, देख चलाई तेग वाई, दे केंडर कीता तिन्हां गुरमां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसे। सब बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्मे सी दित्ते, बंद बंद कटवाए, चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल तन चरवाए, उबलदियां देगां विचों बाले के खोपरियां लुहाइयां, गुरुद्वारियां दी सेवा संभाल ले कुरबानियां कीतियां, तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया, असह ते कहिवा सहार दे शहीद होए सिकिद केसा, सवासा संग नभाई तरम निहारिया। तिन्हां समूह शहीद सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसे। सब बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान दर खालसे। सब बोलो जी वाहिगुरु। प्रथम खालसे जी की अरदास है जी, सरबत खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे।

बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी एक ओंकार, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भौत जी सहाय वार, श्री भौत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जे जिठ साब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरया कार नौन दे आवे ताए। सब थाई हो सहाय दसवीं पातशाह, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। ओ सब थाई हो सहाय दसों पातशाहियों की जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दीदार दा ध्यान तर खालस। बोलो जी वाह। पंजा प्यारियां चौं सबजादियां चालियां मुगतियां अठियां जपियां तपियां शाही सिंघां सिंघणियां जिन्हां नाम जपिया वांड छकिया देग चलाई तेग वाई दे के अंडठ कीता तिन्हां गुरमो प्यारियां सच्चियारियां दी कमाई दा ध्यान तर खालस। बोलो जी वाह। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धरमे सी दिते बंध बंध कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल तन चरवाए उबलदियां देगां विच उबाले गए खोपरियां लोहाइयां गुरद्वारियां दी सेवा संभाल ली कुरबानियां कीतियां तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया असहे ते कह असहार दे शहीद होए सिकिद केसा सवासां संघ नवाई तरमनी हारिया तिन्हां समूह शहीद सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसा सब। बोलो जी वाह। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तर खालसा। बोलो जी वाह। प्रथम खालसे जी की अरदास है जी, सरबत खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चेतावे चेतावन का सदका सिर्फ सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तर शरिया दे ते फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल वाले खालसे से। बोलो जी वाह। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान वसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी के इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। खालसे जी के बोल वाले खालसे से। बोलो जी वाह। सिखां दा मन नीवां मत उची मादे राखे आप अकाल पुरख अंतर जामी गुरु गरीब निवास जी पातशाह पन दे सदा सहाय दार पिता जी। ओ श्री ननकाणा साहब और गुरुद्वारे जिन्हों तो पंथ नूं छोड़िया गया सेवा संभाल अपने खालसा जी ने बख्शो जी। निमाणिया दे माण नेताणिया दे ताण ने उल्टियां दी औण आसरन दे आसरा धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पातशाह जी आप दा कोटान कोट शुक्र है। आप दे पार बख्श रहमत कृपा दस काब दे हजूर शामा दे दीवान सजे सजे दवाना विच आप दे हर जस होए ने कीर्तन कथा ढाडी बारा इतिहास की सेवा करदियां होईयां फुल्लां बख्श लैणियां जथियां नूं चढ़दी कला बणी पढ़ी सुनी बाणी दा भाव सरबत संगतां दे हिरदियां विच वसाउणा। जो संगतां आप दे चरणां च हाजर होईयां तेल फुल भेटा कीती बख्शे हिदायतां हाजर कीतियां तन करके मन करके धन करके सेवा कीती सब दी हाजरी दर पवानी सेवा थाए पौणी सिर ते मेहर भरिया तखणा तंदुरुस्तियां बख्शणियां परिवारों में सुख वरतौना सरबत संगतां दे कारोबार बरकतां बख्शिश करनियां पंथ दे सिर ते मेहर भरिया तकड़ा दरों करों सिखी भरोसा नामदान बख्श के निहाल करना सरबत दे कार्य रास करने अतुट गुरु के लंगरां दी सेवा हो रही दर प्रवान करनी सेवादारां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना दरों करों साहिब भाई अंग्रेज सिंह बीबी हरजीत कौर संधु परिवार वालों बख्शियां दातां दा शुकराना करदे होए परिवार की सुख शांति तंदुरुस्ती चढ़दी कला अते काका शुभदीप सिंह संधु का अठवां जन्मदिन मनाउंदिया बच्चे की चढ़दी कला की शुकराने वजो परिवार वालों आप दे चरणों में अरदास बेनती करदे होया बेअंत माया देगा ते अरदास वास्ते दाता जी बेअंत पा हाजिर होई है। मेहर करनी परिवार की सेवा थाए पाउणी परिवार में सुख वरतौना बच्चों ने सिर तम मेहर भरिया थकड़ा किरत कमान की बरकतां बख्शिश करनी आ काका शुभदीप सिंह के सिर तम मेहर भरिया बच्चे को सिखी जीवन माता पिता आग्या करी बच्चा देश कौम दा सेवक शुभ गुण उच्च विद्या दाता दीर्घ आजू बख्शिश करनी गुरु ग्रंथ गुरु पंथ आशे सा जीवन बख्शना
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਣੀ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਬਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਬਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਖੁਆਰੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

जन की तूर देहो कृपा निद जन की तूर नानक के सुख एही नानक के सुख एदे वेच ही सुख है कि मैनू उन्हां वाले गुण दाता मेरे हिरदे च भी पका दे क्योंकि धूड़ की है। मैं कई बार बेनती की है पूर्ण

सिख सतगुरु के प्यारे हो गाओ सच्ची बाणी। बाणी तां गाओ गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी, जिन को नदर कर्म होवे हिरदे तिना समाणी। पीवो अमृत सुधार रंग, पीवो अमृत सुधारो हर रंग, जप्यो सारंग पाणी। कह नानक

मैं तुझ बिना अवर ना कोई नदर निहालिए। नानक मंगे सच गुरमुख कालिए। मैं तुझ बिन अवर ना कोई नदर निहालिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला पहला। चले चलनहार वाट वटाया, धंध पिटे संसार सच ना पाया। धन वाहिगुरु साहिब जी, धन वाहिगुरु साहिब जी। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ।

मुआ सब संसार एक कबीरा नाम हुआ जे नाही रोवनहार। कबीर राम ना त्यायो मोटी लागी खोर, काया हांडी काठ की ना ओ चरे बहोर। कबीर ऐसी होए परी मन को पावत की न, मरने ते क्या डरपना जब हाथ सिंधौरा लीन। कबीर रस को गांडो चूसिए गुन को मरिए रोए, अब गुन यारे मानस पलो ना कहे कोए। कबीर गागर जाल परी आज काल जह फूट, गुरजो ना चेते अपनो आत्माज लीजेंगे लूट। कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाम,

अपनी काठ की क्या दिखलावें लोए। हृदय राम नाचित ही एह चपने क्या होए। कबीर बिरों भयंगम मन बसै मंत न मन कोए। राम बेओगी ना जिए जिए तबौरा होए। कबीर पारस चंदन तिन्हें एक सुगंध तेह मेल ते उत्तम पे लो काठ निर्गंध। कबीर जम काठें गाबरा है ओह नहीं सहया जाए। एक जो साधु मोह मिल्यो तिन लिया चल लाए। कबीर बैद कहे हों ही पला दारू मेरे वस। एह तो बस्त गोपाल की जब पावे ले खस। कबीर नौबत अपनी दिन दस ले हो बजाए। नदी नाव संजोग ज्यों बहर नामल है आए। कबीर सात समुंदे मस करो कलम करो बन राए। बसुधा कागद जो करो तो हाँ।

हृदय बसै गोपाल, कबीर रमैया कंठ मेल, चूकै सर्व जंजाल। कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराए, पांचों लड़के मार के रहे राम लेलाए। कबीर ऐसा को नहीं।

अंधा लोग न जाने रहे हो कबीरा कूक। कबीर सती पुकारे चे चढ़ी सुन हो बीर मसान। लोग सबाया चल गयो हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो ओडे ओड दाह दिस जाए। जो जैसी संगत मिले सो तै सो फल खाए। कबीर जाको खोजते पायो सोई ठौर। सोई फिर कह तू पया जाको कहता है और। कबीर मारी मरो को संग की केले निकट जो बेर। ओह झूले ओह चीरिए साकत संग नहेर। कबीर पार पराई सिर चरे चलियो चाहे बाट। अपने भारे ना डरे आगे ओ कटकाट। कबीर बन की दाथी ला करी ठाडी करे पुकार। मात बस परों लोहार कै जा रे दूजी बार। कबीर एक मरंते दोए मुए दोए मरंते चार। चार मरंते शे मुए चार पुरख दोए नार। कबीर देख देख जग ढूंढया कहूं ना पाया ठौर। जिन हर का नाम ना चिते हो कहां पुलाने और। कबीर संगत करिए साधकी अंत करे निर्वाह। साकत संग न कीजिए जाते हुए बिना। कबीर जग में चेते हो जान के जग में रहो समाए। जिन हर का नाम न चेते हो बाद जन्मे आए। कबीर आसा करिए राम की अवरे आस निरास। नरक परे ते माने जो हर नाम उदास। कबीर सिख शाखा बहुते किए केसो कियो नामीत। चाले थे हर मिलन को बीचे अटक्यो चीत। कबीर कारण बपुरा क्या करे जो राम न करे सहाय। जेह जेह डाली पग तरों सोई मुर मुर जाए।

रास बिरानी रखते खाया कर का खेत। कबीर साधु की संगत रहो जाओ की पूसी खाओ। होनहार सो होए हैं साकत संग न जाओ। कबीर संगत साध की दिन दिन दूना हेत। साकत कारी कांबरी तोए होए न सेत। कबीर मन मुंडिया नहीं केस मुंडाए काए। जो किश किया सो मन किया मुंडा मुंडिया जाए। कबीर राम ना छोड़िए तन धन जाए ता जाओ। चरण कमल चित बेदिया राम नाम समाओ। कबीर जो हम जंत बजावते टूट गई सब तार। जंत बेचारा क्या करे चले बजावन हार। कबीर माए मुंडो ते गुरु की जाते परम न जाए। आप डुबे चौबेद में है चेले दी बहाए।

परगट भय निदान साब जब पूछे धर्म राय। कबीर हर का सिमरन छाड कै पालियो बहुत कुटुंब, धंधा करता रह गया पाई रहा न बंद। कबीर हर का स्मरण छाड कै रात जगावन जाए, सरपण होए के उतर जाए अपने खाए। कबीर हर का स्मरण छाड कै अहोई रख नार, गदी होए कै उतर पारस है मन चार। कबीर चतुराई यत कनी हर जप हृदय माहे, सूरी ऊपर खेलना ग्रह तठा हर नाहे। कबीर सोई मुख तन है जा मुख कहिए राम, देही किसकी बापुरी पवित्र होए गोग्राम। कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास, जे कुल दास न उपजै सो कुल ठाक पलास। कबीर है गए वाहन सगन कान लाख तजा फहराए, या सुख ते भिखिया पड़ी जो हर सिमरत दिन जाहे। कबीर सब जग हों फिरे ओ मंदल कंध चढ़ाए, कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। मार्ग मोती बिथरे अंधा निकसियो आए, जोत बिना जगदीश की जगते उलंघे जाए। बूढ़ा बंस कबीर का उपजियो पूत कमाल, हर का स्मरण छाड कै घर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे कोए, पाछे पाँव ना दीजिए आगे होए सोए। कबीर जग बांधो जे जेवरी ते मत बंदो कबीर, जह आटा लोन ज्यों सोन समान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो सो जाई सेना, अज हूं जियो ना छोड़ई रंकाई नैना। कबीर नैन निहारो तुझको श्रवण सुनो तो नाओ, बैन उच्चरो तो नाम जी चरण कमल दिठाओ। कबीर सुरग नरक ते मैं रहयो सतगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंतर याद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह के कहो कहे न को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुन गाए।
कबीर चुगै चितारे भी चुगै चुग चुग चितारे। जैसे बचरे कूंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर्षाया बरख परे सरताल। चात्रक ज्यों तरसत रहै तिनको कौन हवाल। कबीर चकई जो निस बिछुरै आए मिले प्रभात।

सुखों सोवे सुख। कबीर सुता क्या करे, उठ के ना जपे मुरार। एक दिन सोवन होए गो, लांबे गोड पसार। कबीर सुता क्या करे, बैठा रो और जाग। जाके

कबीर साकत संग न कीजिए दूरें जाइए भाग। बासन कारो परसिए तो कछ लागे दाग। कबीर आराम न चेत्यो जरा पहुंचो आए। लागी मंदिर द्वार ते अब क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो पयो जो कीनो करतार। तेस बिन दूसर को नहीं एक सृजनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आंब। जाए पहुंचे खसम को जो बीच न खाही कांब। कबीर ठाकुर पूजे मोल ले मान हठ तीर्थ जाए। देखा देखी स्वांग तार भूले पटका खाए। कबीर पाहण परमेश्वर किया पूजे सब संसार। इस परवासे जो रहे बूढ़े काली तार। कबीर कागद की ओ बरी मास के कर्म कपाट। पाहन बोरी प्रथमी पंडित पाड़ी बाट। कबीर काल करंता है बेकार आब करता सोए ताल। पाछे कछु ना होएगा जो सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जंत एक दिखया जैसी तोई लाख। दिसे चंचल बहु गुना मात ही नाना पाक। कबीर मेरी बुद्ध को जमना करे तिस्कार। जिन ए जमुआ सरजिया सोच पिया परवदगार। कबीर कस्तूरी पया पवर पय सबदास। ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास। कबीर गह गच परे ओ कुटंब कै।

कबीर कौडि कौडि जोर कै जोरे लाख करोर। चलती बार ना काश मिलियो लई लंगोटी तोर। कबीर बैशनो हुआ ता क्या पया माड़ा मेली चार। बाहर कंचन बारहा पीतर परी पंगार। कबीर रोड़ा होय रो बाटका ताज मन का अभिमान। ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। कबीर रोड़ा हुआ ता क्या पया पंथी को दुख दे। ऐसा तेरा दास है जो तरणी में खे। कबीर खे हुई तो क्या पया जोड़ लगे अंग। हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सर्वांग। कबीर पानी हुआ ता क्या पया सीरा ताता होए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। ऊंच पवन कन कामने शिखर तजा फहराए। ताते पली मधु करी संत संग गुन गाए। कबीर पाटन

मान मुनि मन वार गले मान सब को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलिया शब्द जो बाहया एक लागत ही पोए मिल गया परया कलेजे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मैं चूक। अंधे एक ना ला गई ज्यो बांस बजाइए फूक। कबीर है गए बाहन सगन कान छत्रपति की नार तास पटन तरना पुजे हर जन की पनहार। कबीर नृप नारी को निंदिए क्यों हर चेरी को मान। ओ माघ सवारे बिखे को ओ सिमरे हर नाम। कबीर थूनी पाई तित पई सतगुर बंदी तीर। कबीर हीरा बंजया मान सरोवर तीर। कबीर हर हीरा जन जौहरी लेके मांडे हाट। जब ही पाए पारखू तब हिरण की साट। कबीर काम परे हर सिमरिय ऐसा सिमरो नित। अमरापुर बासा करो हर गया बहोरे बित। कबीर सेवा को दे पड़े एक संत कराम। राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। कबीर जे मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर। एक अवकट काटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। कबीर दुनिया के दुखे मुआ चालत कुल की कान। तब कुल किस का लाज सी जब ले तरह मसान। कबीर डूबोगे रे बापुरे बोलोगन की कान। पारोसी के जो हुआ तू अपने भी जान। कबीर पली मधु करी नाना बेद को नाज। दावा काहू को नहीं बड़ा देश बड़ राज। कबीर दावे दाजन होत है निर्दावे रहे निशंक। जो जान निर्दावे रहे सुगन इंद्र सोरंक। कबीर पाल समूहा सरवर परा पी ना सके कोई नीर। भाग बड़े तें पायो तू पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे त्यों ए खिसे शरीर। ए दो अखर ना किसे सो गए रे ओ कबीर। कबीर कोठी काट की दादश लागी आग। पंडित पंडित जाल मुए मूर्ख बरे पाग।
कबीर संसा दूर कर कागद दे बिहाए। बावन अखर सोध कै हर चरणी चितलाए। कबीर संत न छाडै संत ई जो कोटक मिलै संत। मले आगर पयंगम बेढ़ियो ता शीतलता ना तजंत। कबीर बन शीतल भया पाया ब्रह्म ज्ञान। जिन ज्वाला जग जा रहा सो जन

कह जाने आपन तने कह दास दीवानी होए। कबीर पली पई जो पौपरे आद सा गई सब भूल, ओरा कर पानी पया चाहे मिलियो टल कूल। कबीरा तुर सके लकै पुरियां बांधी दे, दिवस चार को पेखना अंत खे की खे। कबीर सूरज चांद कै उदय पई सब देह, गुर गोबिंद के बिन मिले पलट पई सब खे। जह अन पौ तै पै नहीं, जय पौ तै हर ना है।

किछु जान्या नहीं तिन सुख नींद बिहाए। हम जो बूचा बूचना पूरी परी बलाए।

कबीर लागी प्रीत सुजान स्यों बरजै लोग अजान ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हितकार काए मरो सवार कार्ज साडे तीन हाथ कनी त पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना करे क्या मेरे चितवे होए अपना चितवे आहार करे जो मेरे चित ना होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतग्रंथ दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कार योग सतसंगी जी नूं वड़ पा गए जिथे आप जीआं ने लड़ीवार चल रहे श्री सहज पाठ दे राही पावन बाणी दा आनंद माणिया। समा है शब्द चौंकी आसा की वार दे कीर्तन दा। सेवा निभाउणगे भाई परमिंदर सिंह जी। आओ तिन्हां पासों पावन बाणी दे शब्द कीर्तन श्रवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे अस राजा की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा
1: जी सौ चंदा उगव है।

पड़े अपने आप साजो अपने रचो नाओ दोए कुदरत साजिए करा संडित हो जाओ दाता करता आप तू तुस दे वै करे पसाओ तू जाने सबसे दिला सह जिंद कवाओ करिया संडित हो जाओ करिया सुन डिट

सच ना पाया क्या पविए क्या ढूंढिए, गुर शब्द दिखाया ममता मोह विसरजिया।

सच मिले सच यार, कूड़ ना पाइए सच्चे स्यों चित लाए, बहुड़ ना आइए मोया को क्या रोवो, रोए ना जान रोवो सच सलाह हुकम पछाण हो। हुकमे वजह लिखाए आया जानिए, लाहा पल्ले पाए हुकम सियाणिए। हुकमे पैंदा जाए दरगाह पाणिए, हुक्मे ही सिर मार बंद रबाणिए। लाह सच ने आओ मन वसाइए, लिखिया पल्ले पाए गर्भ वन्याइए। मन मुखिया सिर मार वाद खपाइए, ठग मुठी कूड़ यार।

0: नानक मंगे सच गुरमुख का लिए, मैं तुझ बिन अवर ना कोय नदर निहालिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे, गुरु सवारे, अति सत्कार योग सतसंगी जनों, वटभागे हां जिथे आप जीआं ने शब्द चों की आसा की वार दे कीर्तन सरवण कीते ने। सरबत दे भले दी अरदास उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाक दी दात बख्शिश कीती है, पवित्र उपदेश आप संगतां ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित सरवण कीते हन। समा है पावन मुख वाक दी कथा विचार दा। सेवा निभाउण गए भाई गुरु शरण सिंह जी चीमा, औतना पासों पावन मुख वाक दी कथा विचार सरवण करिए जी। भुलां चुकां दी खिमा, आप संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम।

अपराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम्हें अपन बिरद रखावो। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखनहार दयाला

सतनाम। वाहिगुरु साहिब जीओ, डंडौत बंदन अनक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन ते

हमारा है जिसके अंतर बसे निरंकार जिसकी सीख तरे संसार जो तुम पाने तिन प्रभु जाता नानक उन जन चरण पर आता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना की आया पैमाने आपे आप आप करत नवेरा किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा उपाप शान सकल तेरा सबके जान है आत्म की रह जिस पावे से लय लड़ लाए तान तनंत रिहा समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी श्लोक काम क्रोध यार लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेवस्वरी जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए ते ठाकुर को रखमान माए जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिम परमगत पावे जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मने अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना और पैर सिमरो तिसे रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे किसे त्याग अवर लुभावे जे प्रसाद सुख से सुई जय मन आठ पैर तागा जस कवि जय जे प्रसाद तू सबको मान है मुक्ता को जस रसन मखान है जे प्रसाद रहता धर्म मन सदा त्याग केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जगत दरगा महान पावे नानक पास से ती कर जाव है जे प्रसाद रो कंचन देही निविलावो तिस राम सनेही जे प्रसाद राव ला रहे मन सुख पावे हर हर जस कह जे प्रसाद सगल छिद्र ठाक है मन सरणी प्रभु ठाकुर प्रभु ताक है जे प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सास सास सिमरो प्रभु उच्चै जे प्रसाद पज दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद भूखन पहरी जय मन ते सिमर क्यों आलस की जय जे प्रसाद अश्व हस्त सवारी मन तिर मन तिस प्रभ कबो नाम विसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राग प्रोवे प्रभु अपने मना जन तेरी मन बंत बनाई ऊठ बैस सर तिसे ते आई तिसे ते आए जो एक लख वहाँ नानक तेरी रख है जे प्रसाद करे पुन बोदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार बिहारी तिरपा को साह चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कहे जे प्रसाद सुने करनाथ जे प्रसाद पेखे विस्मात जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चला है जे प्रसाद सपूर्ण फल है जे प्रसाद परम घर पावे जे प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रभु त्याग अवर कद लागो गुर प्रसाद नानक मन जाग हो जे प्रसाद तू प्रगट संसार सिर पव को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर तू ताको जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साज रे मन मेरे तू ताज हो राज जे प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपे जप सोए आप जपाए जपे सो नाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगाज प्रभु दया ते कमल विघास प्रभु सो प्रसन्न वसे मन सोए प्रभु दया मल उत्तम होए सर्वदान प्रभु तेरी मया आपो कुछ कछु न किनू लया जे दित लाव तित लगे हरनाथ नानक इन कह कछु

कथा नरसवरी साध के संग उज्जवल होत, साध संग मल सगली कोत, साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रकट सो ज्ञान, साध के संग बुझे प्रभ नेहरा, साध संग सब होत नवेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग कुपर जतन, साध की महिमा वरने कौन परानी, नानक साध की शोभा प्रभ में समानी, साध के संग गोचर मिले, साध के संग सदा पर फुल, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हो सब की रेन, साध के संग मनोहर बहन, साध के संग न कदहूं तावे, साध संग अस्तित मन भावे, साध के संग माया थे फैन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन समीत, साधु के संग महापुनीत, साध संग के सोने बैर, साध के संग न मींगा पैर, साध के संग नहीं को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध के संग नहीं ताप, साध के संग तजे सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई, साध के संग न कबहूं तावे, साध के संग सदा सुख पावे, साध संग बस गोचर लहे, साधु के संग लहर सहे, साध के संग बसे थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे, साध के संग जड़े सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निदान, नानक साधु कह कुर्बान, साध के संग सब को लो धारे, साध संग साजन मीत कुटम निस्तारे, साधु के संग सोतन पावे, जिस तन ते सब को बरसावे, साध संग धर्म रहे करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा, साधु के संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्वथान गम, नानक साध के संग सबल जनम, साध के संग नहीं कज काल, दर्शन पेड़ तो होत निहाल, साध के संग कलुगत हरे, साध के संग नरक पर हरे, साध के संग वहां सहेला, साध संग बिछड़त हर मेला, जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न फिरथा जावे, पार ब्रह्म साध रित बसै, नानक उतरे साध सुन रसै, साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साधु साध के संग लगे ब्रह्म मीठा, साधु के संग कर कर डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पै हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पिटे संजोग, साध की महिमा भेद न जाने, जेता सुने तेता बखयाने, साध की उम्मा ते गुण ते दूर, साध की उम्मा रे भरपूर, साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊजते ऊंची, साध की शोभा मूजते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एक बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ऐश्वरी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोग, जैसे सूर सर्व को शोक, ब्रह्म ज्ञानी के दिश समान, जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी के तीर एक, योम सदा को खोदे को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का ये गुनाओ, नानक ज्यो पाव का सह स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे महल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगाद, जैसे तरयु परे आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सदृ समान, ब्रह्म ज्ञानी के नह अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे, नानक जिन प्रभाव करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी जीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दिस अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपराज, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी का ना ही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले दावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी के हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल भला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत,
ब्रह्म ज्ञानी अहमबुद्ध त्याग ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बिनाद ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता ब्रह्म ज्ञानी के हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कसया ना जाए अदा कर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरग विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आव निंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक उर तारे जो अंतर नाम सर्व में पेखे भगवान निमुख निमठाकर नमस्कार है नानक ओ अपरस सगल निस्तार है अष्टपदी मिध्याना ही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पात्र रूप न पेखे नेत्र साधु टहल संत संग हेत कर न सुने काहू की निंदा सब थे जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद बिखिया पर हरे मन की बात न मन ते डरे इंद्री जित पई दोख ते रहे नानक कोट मजे को ऐसा परस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिन की माया ते हुए पैना कर्म कर तो हुए नह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाश केवल भक्त कीर्तन संग्राचा मन धन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप जड़े अवरा नाम जपावे नानको वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मन ते बिन से सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवे तिस भगवती मल उत्तम होवे भगवंत की टहल करे निर्नीत मन तन अर्पे बिशन प्रीत हर के चन हृदय बरसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबोधे राम नाम आत्म में सोधे राम नाम सारस पीवे उस पंडित के उपदेश जाग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे बेप्राण सिमरत पूजे मूल सुख में जाने अस्तूल चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा अदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना में जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत होए साध संग पावे जन कोए कर कृपा अंतर उर तारे पास प्रेत मूल पाथर को तारे सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कदे ना पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्मा जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम नदरी आया दास दसंदन पाए दिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगाह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सब सो जी परे सगल संग आत्म दास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा आत्म ही तावे जीवन मुक्त सो कहावे तैसा हर्ग तैसा उसो सदा नानत नहीं बेयोग तैसा सुन तैसी उस माठी तैसा अमृत ऐसी बिखाठी तैसा मान तैसा अवमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जिद जिद कर रखे तैसा दिन नाव आपे कर्ण करावन जोग प्रभ पावे सोई भनोग पसरे हो आप होए न तरंगा लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मादे तैसा प्रगाल पार ब्रह्म करता अविनाल सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पै निहाल श्लोक उस तत करे अनेक जन अंत न पारा वार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार बिहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट वन प्रमे उदासी
कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कव का विचार है, कई कोट नव धन नाम ते आवे, नानक करते का अंत न पावे है। कई कोट पहे अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट पिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्व कुहिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रम महाय, कई कोट परदेश परमाय, जे जित लावो ते तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट से जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्फ उपाय, कई कोट पाथर बिरह निभाए, कई कोट पवन पानी बेसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्य सूर निखतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छतर, सगल समगरी अपने सुह तारे, नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राज तामन साधक, कई कोट भेद प्राण सिमर धर सास, कई कोट किए रत्न संबंध, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थीवे, कई कोट जग के निरपिसाज, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच, सब ते नेरे सब हूं ते दूर, नानक आप लिप्त रहा भरपूर, कई कोट पताल के वासी, कई कोट नर स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बोजोनी फिरे, कई कोट बैठ दी घाय, कई कोट काले थक पाए, कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया में चिंत, जय जय पाणा तय तय राख, नानक सब कृपा कै हाथ है, कई कोट पै बैरागी, राम नाम संग तिल निवलागी, कई कोट प्रभु को खोजनते, आत्म में पर ब्रह्म लहनते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिलियो प्रभु अविनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक दे जन सदा तन तन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई युद्ध किन्नो विस्तार, कई बार पसरियो पसार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट किन्ने बपात, प्रभ ते हो प्रभ मह समात, ताका अंत न जाने कोय, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेथे, सदा निहारे को नेतरे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर पै सद सद ही जीवे, कई कोट नाम गुण गावे, आत्म रस सुख सहज संभावे, अपने जन को साथ साथ संभारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे। श्लोक, करण कारण प्रभु एक है, दूसर नाही कोए, नानक तिस बलहारण है, जल थल मैयल सोए। अष्टपदी, करण करावन करने जोग, जोत सुपावे सोई योग, किन में ताप तापन हारा, अंत नहीं किश पारा वारा, हुक्मे तार अतार रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म संभावे, हुक्मे उच नीच व्यवहार, हुक्मे अनकरंग प्रकार, कर कर देखे अपनी बड़ियाई, नानक सब में रिया समाई, प्रपावे मन हुगत पावे, प्रपावे ता पाथिर त्रावे, प्रपावे बिन सास दे राख, प्रपावे ता हर गुण पाख, प्रपावे ता पस उधारे, आप करे अपन बिचारे, नुआ सिरिया का आप स्वामी, खेले बिगसे अंतर जामी, जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे, कहो मनुख ते क्या होए आवे, जो दिस पावे सोई करावे, इसके हाथ होए सा सब किछले, जो दिस पावे सोई करे।

करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी पराजियो ज्योतिष भावे सोई पुन थियो कबू ऊंच नीच में बसा कबू सोग हर घरंग हसा कबू नंद चिन्ह व्यवहार कबू ऊब काश पयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानक आम मिला उनहार कबू नृत्य करे बपात कबू सोए रहे दिन रात कबू महाक्रोध विकराल कबू सर्व की हो तरवाल कबू होए बहे बड़ राजा कबू भिखारी नीच कसा जा कबू अब कीर्त में आवे कबू पला पला कहावे जो प्रभु राखे तिवि रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे कबू होए पंडित करे बुज्ञान कबू मुनतारी लावे ध्यान कबू तर तीर्थ स्नान कबू से साधक मोह ज्ञान कबू कीट हस पतंग होए जिया अनक जोन परमे परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावे जो प्रभु पावे तिवे नचावे ज्योतिष पावे सोई होवे नानक दूजा अवर न कोवे कबू साध संगति ये पावे उस स्थान ते भवर न आवे अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंथन नाम रते एक रंग सदा बसे पार ब्रह्म के संग ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गबन पाए विश्राम नानक प्रभ कै साधु।

0: ले अष्टपदी जिसके अंतराज उमान सो नरक पादी होवत सुवान जो जाने मैं जो बनवंत सो होत विष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे बोजून परमावे तन पूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक इहां मुक्त आगे सुख पावे तनवंता होय कर गर्भावे त्रिन समान कर संग न जावे बहु लश्कर मनुख ऊपर करे आस पल पीतर ताका हुए विनाश सब ते आप जने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुवारी गुर प्रसाद जा का मिटे अवमान सो जन नानक दरगह परवान कोड कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले फिर सारे अनक पस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आदम नहीं दहवे हर दरगाह को कैसे गावे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जा का मन होए और नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए जाबे जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लगने चल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग तर्म रह दे सजाए प्रभु कृपा से बंधन टूटा गुर प्रसाद नानक हो छूटा है सहस कटे ला कोय उठतावे त्रिपत न आवे माया पाशे पावे अनक भोग बिखया के करे नहीं त्रिपतावे खाप खाप मरे बिना संतोख नहीं को राजा सुपन मनोह बिरथे सब काजा नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दिस कर तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किसी की नो सो अपने रंग सब ते दूर सब भूखे संग बूझे देखे करे विवेक आपे कापे अनेक मरे न बिन से आवे न जाए नानक सारी रिहा समाए आप उपदेश समझे आपे रजिया सबके साथ आपकी नो अपन विस्तार सब किश उसका वो करने हार उसते पिन कहो कि होए थान तनंतर ये केस होए अपने चलत
1: करने हार को तो फरे रंग खपार मन मथा मर अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सतो सत सत प्रभु स्वामी ही गुरु प्रसाद खने वखियानी सच सच सत सब कीना कोठ में देखने बरले चीना भला भला भला थ्र रूप अत सुंदर पार हनुपा निर्मल निर्मल निर्मल थरी बाणी गड़ गड़ सुनी सरवण वखाणी पवित्र पवित्र पवित्र बनी छो नाम जप नानक मन फरीद सलोका संत सन जो जन पर सोदन उदरन हारो संत के निंदा

साधु की दूर करो इसनान, साधु ऊपर जाइए कुरबान, साध सिमावण भागी पाइय, साधु संग हर कीर्तन गाइय, अणग बिगण ते साधु राख, हर गुण गाय अमत हो रह चाख, ओढ़ गई संत इंद्र आया।

जपजन सदा सदा दन रैणी सबते ऊच निर्मल ए करनी कर कृपा जस को नाम दिया। नानक सोजन निर्मल थिया जाखे मन गुरखी परती तो चनया वह हर पर्व चीता।

को परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊच नीच सके अस्थान जैसा जनावे तैसा नानक जाना नाना।

सत पुरख समह समाणी सातो कर्म जाखी रचना सातो मूल सातो सतो दपातो सतखरनी निर्मल निर्मल जिसे बुझाए तिसे संभली सतना प्रभु का सुख थाई बसवा सत नान गुरथे पाई सत वचन सानू अपदेसो सत ते जन जाख हृदय परवेसा सत नत मुझे जे खोए नाम जब ताखी गत होए आप सत खिया समसाता

प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दस प्रगटाया निकी कीरी मैं कल रख भस्म करे लश्कर कोट लख जिसका शासन करत आप था को राखन देखन हाथो मन जरत करथ माता तिसके करतव बिरथे जातो मारे न राखे अवन कोए सर्व जिया का राख सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभु लख बटाणी बारंग बार बार प्रभु जपिया पी अमृत हे मंत्र तृपिया नाम रतन जन गुरमुख पाया तिस किछ अवर न।

ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एखे आप नहीं कछ भरम सह सियान पल्याण जाइया नानक ऐसा गुरबड़ भाखी पाइया सबर दर्शन पेख दपनीता परसत चरण गथ निर्मल रीता भेटत।

ठंडा हर नाव सिम सिम सदा सुख पाऊ पो बंसे पून हो आस भक्त पाई आत्म बरगासा तित कर जय बसे अवनासी कव नान काटी जम फाथी तत् विचार कहे जन साचा जन मरे सो का चोका चा आवागमन मिठे प्रभ सेवो आप त्याग सन गुरदेवा इं रतन जन्म का हो अधारो हर सिमन प्राण अधारो अणक अपावन छूटन हारे सिमर तो शास्त्र भेद बिछारे हर की भगत करो मन लाए मन वंशत नानक फल पाए संग न चाल तेरा तना तू कह लपटावे मूर्ख मना सतमीत कठम और

दुष्टा राष्ट्रपति आपो कथी आप सुनने हारो आपे अखा पैम सतारो जा तस पावे तिष्ट पाए अपने पाने लय समाए तुम ते भैन नहीं कुछ होए अपन सब सब जगत बरोए जा गो ब्रोछियो आ बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सेठ का जेता जी यंत्र सब था कह हाथ थीन दयाल अनाथ कुनाथ जिस राखें जिस कोई

जिस भावे जिस लय मलाई भगत करे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मनया कन हर नानक एक जानया। जन लग हर एक नाए दिसकी आसन बिरथी जाए। सेवक से बावन आई हुक्म बूझ परम पद पाई। इसते ऊपर नहीं बचार अच्छा के मन बसया निरंकार। बंधन तोर पई नर वैर अंधन पूजे गुरखे पैर। ए लोग सुखी।

एक ओंकार वाहगुरु जी की फतेह। वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरें घर नौ निधि आवे ताए। सब थाई हुए सहाए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब। सब थाई हुए सहाय दसा

0: वड़भागी सा संग प्राप्त तन भेटत धर्मत खोई तन की धूर नानक दास बछै जन हर नाम हृदय परोई। वड़भागी सा संग प्राप्त तन भेटत धर्मत खोई तन की धूर नानक दास बछै जन हर नाम हृदय परोई। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सन्मान ते सत्कार जो गुरु रूप गुरु प्यारी साहिब सिंह जीओ बहुत ही सत्कारयोग भाई मलकीत सिंह जी सैणी, बीबी हरबंश कौर सैणी, भाई गुरदीप सिंह सैणी, बीबी अमनदीप कौर, समूह परिवार को गुरु साहब ने नवे मकाना की दात बख्शी है ते गुरु साहब के मुबारक चरणा च पहुँच के गुरु साहब का शुकराना करते हुए सुखा की मणि सुखनी साहब के जाप होए है, कीर्तन होए है, ढाडी जत्थे ने एक वार बोली है, उपरंत अरदास होई है सारे चढ़ती कला वास्ते। गुरु साहब सब न चढ़ती कला बख्शिश करना, सैणी परिवार के सिर ते मेपर हाथ रखन, घर परिवार में सुख शांति बख्शिश करन। सैणी परिवार वालों जिन्हें भी तुम उन्होंने सदे पत्र से इस पावन स्थान पर पहुंचो सारे का हार्दिक धन्यवाद जिया आखते हैं। हुण देग वरत रही है, देग लैण तो बाद सैणी परिवार वालों हार्दिक बेनती भी सारे ने गुरु के लंगर चो लोड़ मुताबक गुरु का लंगर भोजन प्रसाद छक के जाना है, यह बेनती प्रवान करो। सारे का ही धन्यवाद, सारे गुरु साहब चढ़ती कला बख्शिश करना। बुलाओ फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: बंद हो कर दो, इतना

दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न होई तू करता करुणा में नाही जाहु करी न होई बलहारी कुदरत बसया तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता अकल।